गमय मृत्यो अमृतम गमय शांति शांति असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो अमृतम गमय शांति शांति असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय